0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनी नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।
3: हाँ,

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनी नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।
3: विज्ञानाची ओर आहे आणि संशोधनात करिअर करायचंय,
4: मग MGM विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोसायन्सेस आणि टेक्नॉलॉजीला नक्की भेट द्या।
3: BSc ऑनर्स मध्ये बायोटेक्नॉलॉजी, बायो इन्फॉर्मॅटिक्स, IBM, ICE, मायक्रोबायोलॉजी आणि फूड न्यूट्रिशन साठी प्रवेश सुरू।
4: पदव्युत्तर शिक्षणासाठी MSc बायोटेक, बायो इन्फॉर्मॅटिक्स आणि मायक्रोबायोलॉजी, व्हायरोलॉजीचे उत्तम पर्याय उपलब्ध।
3: उज्ज्वल भविष्यासाठी सज्ज व्हा, MGM कॅम्पस, छत्रपती संभाजीनगर।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक बार एक लड़का अपने पिता के पास गया और पूछा, पापा मेरे जीवन की क्या कीमत है? पिता ने उससे कुछ जवाब देने के बजाय लोहे का पुराना टुकड़ा दिया और कहा, इसे बाजार ले जाओ पर इसे बेचना मत, बस जो भी इसकी कीमत पूछे अपनी दो उंगलियां उठा देना। लड़का बाजार गया। एक औरत ने पूछा, इस लोहे के टुकड़े का क्या दाम है? मुझे अपनी क्यारी खोदने के लिए चाहिए। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस दो उंगलियां उठा दी। औरत ने कहा, 200। ठीक है, मैं ले लूंगी। लड़का हैरान होकर घर लौटा और पिता को बताया। पिता ने कहा, अब इसे किसी कबाड़ वाले के पास लेकर जाओ। कबाड़ वाले ने भी वही सवाल किया। लड़की ने फिर दो उंगलियां उठाई। कबाड़ वाला बोला, 2000। ठीक है, सौदा पक्का। लड़का और भी दंग रह गया। अंत में पिता ने कहा, अब इसे किसी बड़े म्यूजियम लेकर जाओ। उस म्यूजियम वाले ने उसे देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, ये तो सदियों पुराना दुर्लभ औजार है, इसकी क्या कीमत लोगे? लड़के ने फिर खामोशी से दो उंगलियां उठा दी। म्यूजियम वाले ने चिल्लाया, 20 लाख, ये तो बहुत सस्ता है, मैं अभी पैसे देता हूँ। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं और किन लोगों के बीच रहते हैं। अगर आप 200 वाली जगह पर खड़े हैं तो दुनिया आपकी उतनी ही कीमत लगाएगी, लेकिन अगर आप खुद को निखारते हैं, सही जगह चुनते हैं, तो आपकी वैल्यू करोड़ों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, खुद से पूछिए, आप खुद को किस मार्केट में रख सकते हैं और किस तरीके से खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। बात याद रखिए और सुनते रहिए
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് എം ജി എം 90.8 FM. फिलहाल गर्मी देखो भाई बहुत बढ़ रही है और इस मौसम में ना तो अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो हेल्थ टिप्स में आज जानते हैं कि गर्मी में अपना हेल्थ कैसे बेस्ट रखे। गर्मी में अगर बॉडी को कूल रखना है तो प्लेट को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। हेवी और ऑयली खाना अभी के लिए थोड़ा साइड कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको लेजी बनाता है बल्कि अपनी बॉडी की गर्मी भी बढ़ाता है। अब एंट्री होनी चाहिए कूल फूड्स की, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी। ये सिर्फ फ्रूट्स नहीं है, ये आपकी समर की रियल हीरोज है। ये सब हाइड्रेशन भी देंगे, फ्रेशनेस भी और पेट भी हल्का रखेंगे। तो आज से एक छोटा चेंज कीजिएगा, थोड़ा लाइट खाइए, थोड़ा कूल रहिए और गर्मी को बोलिए बॉस मैं रेडी हूँ। बस इन बातों का ख्याल रखें और अपने हेल्थ को वेल रखें। बाकी टेक केयर और इस गर्मी से थोड़ा बचिए। आपका दिमाग ऑलरेडी गर्म होता है तो उसको ठंडा कीजिए और ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM ऑल इज So, अपने साथ डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम, HOD ऑफ MGM डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो मैम, ओवर थिंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग का असर एंजाइटी पर होता है क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का। ओवर थिंकिंग जो है ये एक कह सकते हैं रॉ मटेरियल है एंजाइटी के लिए, क्योंकि एंजाइटी क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रिपेयर करती है डेंजर के लिए, है ना। वो ब्रेन को बोलती है कि डेंजर है डेंजर है। और ओवरथिंकिंग करने से हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली उस डेंजर की तलाश में होता है। तो एंजाइटी जो है ये एक स्टेट है, और ओवरथिंकिंग जो है ये हमारे ब्रेन का एक थिंकिंग पैटर्न है। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट भी है एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर ऑल्सो। तो डेफिनेटली एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग का बहुत गहरा कनेक्शन है।
0: सो दोस्तों, आपके भी मन में कुछ सवाल होंगे रिलेटेड टू ओवरथिंकिंग, तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिल्कुल बात की जगह इस टॉपिक पर हम आपके सवालों के जवाब बिल्कुल देंगे। स्टे ट्यून।

en copia je. Me da Omar en copia je. इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझे पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे दिम सही हा, हा। इनके लिए मोहतरम छेड़ा किसी और को था।

यार, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एक अजनबी हसीना से मुलाकात होगी, जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने। तो लगता है अभिषेक भाई की भी किसी अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई है, इसलिए ऐसे गाने सुनने का भी मूड कर रहा है। चलिए फिर अभिषेक की फरमाइश पूरी करते हैं और उनका ये पसंदीदा गाना प्ले करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जल्दी करें, देर मत करें और एंजॉय करें आने वाला सुपर से डुपर हिट गाना। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM साथ है तो

बताए वो यहीं पर ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

कहते हैं ना कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ, और ये साबित हो चुका है। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ ऑल इज वेल, एंड ऑल इज वेल में बात कुछ ऐसी है कि भाई सोशल मीडिया पर आप एक चीज नोटिस की होगी इन दिनों के एक पॉलिटिकल पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है, ना वो रूलिंग पार्टी है ना अपोजिशन पार्टी है, वो पार्टी है कॉकरोच की। तकरीबन भाई 4 दिन के अंदर इसके 9 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। और यू नो व्हाट, इस पूरे कैंपेन की शुरुआत हुई थी 15 मई 2026 से। तो 15 मई के दिन कुछ ऐसा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था, वो केस के दरमियान उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था जो कि बहुत विवादित रहा था, और उसके ऊपर यूथ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और उन्होंने जो इस देश के अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, तो उनको पैरासाइट और कॉकरोच से कंपेयर किया था। तो ये बात सारे यूथ को लग गई। जब बात यूथ के दिल पे लगती है तो एक्शन का रिएक्शन आना लाजमी है। तो कुछ एक्शन का रिएक्शन इस तरीके से आया कि पॉजिटिव तरीके से लेकर एक खुद की पार्टी शुरू की है कॉकरोच जनता पार्टी इस नाम से। और अगर आप इस पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे ना तो बहुत ही शानदार है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है, ये आज के वक्त में बहुत जरूरी है। एमएलए हो, एमपी हो, नेता हो, इलेक्शन के बीच में कुछ गड़बड़ किया तो तकरीबन 20 साल के लिए उसे पॉलिटिकल बैन करवा देना चाहिए। तो इस तरीके से उनका एजेंडा है उस पार्टी का, जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी शुरू हुई है उसके अंदर ये कहा गया है। अब ये मोमेंट कहां तक जाएगा, किस रूप में ये सामने आएगा और भी इसके कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब हम ये बात कर रहे इस दरमियान भी अब तक उनको कुछ फॉलोअर्स तो बढ़ चुके ही होंगे, क्योंकि सोचिए 4 दिन में 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। देखते आगे कितने फॉलोअर्स इनके बढ़ेगी और ये कहां तक जाएगी यूथ पार्टी। सो कहते हैं ना कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। स्टे ट्यून्ड।

0: राजकुमारी के अंदर जिस रूह का साया था पीर मुर्शिद ने अपने अंदर ले लिया।
1: प्रशासन बात कर रहा है, अधिकारी लोग बोल रहे कि यार पेट्रोल तो बहुत है, आप फिक्र मत कीजिए। तो ये लंबी लंबी लाइन है किस चीज के लिए पंप के बाहर भाई, कोई बताएगा? आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमसीएम 90.8 एफएम। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे कि अपने शहर के बहुत सारे पेट्रोल पंप पूरी तरीके से ड्राई हो गए है और कुछ कुछ पेट्रोल पंप तो फिलहाल शट डाउन हो गए है क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है, उनके पास आ ही नहीं रहा। लेकिन प्रशासन तो कहता है कि भाई फिक्र मत कीजिए, पेट्रोल हमारे पास बहुत है, कोई भी पेट्रोल की नहीं आएगी। आप तो कहते हो जनाब, लेकिन असल मायने में पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ है पेट्रोल? आप तो कह रहे हो पेट्रोल है लेकिन रियलिटी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रशासन सवाल तो आप ही से, आप तो कह रहे हो कि पेट्रोल तो अवेलेबल है लेकिन असल मायने में पेट्रोल कहाँ है, कहाँ गायब हो रहा है? मुझे लगता है कि भाई गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है। ना प्रशासन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ना पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल आ रहा है, और बस अंधेरे में रह रहा है आम आदमी। उसे बस उम्मीद है कि पेट्रोल हमको मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कोई जवाब नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो रात रात भर लाइन में खड़े रहकर अपने गाड़ियों में पेट्रोल भर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए भाई, दुनिया में कुछ भी हो जाए, झेलना और सहन करना तो आम आदमी को ही पड़ता है, है ना? वही तो एक मैंगो मैन है जिसको सब चूसते हैं और गुठली फेंक देते हैं काम होने के बाद, उस तरीके से भाई। खैर आप क्या ही बोले, बस प्रशासन से दरख्वास्त है कि पेट्रोल दीजिए हमको। स्टे ट्यून्ड,
2: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

मई महीने में आम आदमी आम चूस रहा है और आम आदमी को ये प्रशासन और ये दुनिया चूस रही है। भाई करे तो करे क्या। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM और बात कुछ ऐसी है कि ना पानी मिल रहा है, ना लाइट मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है और ना जिंदगी में सुकून मिल रहा है। बस सब तरह हाहाकार मचा हुआ है। पानी 8 दिन में एक बार या दो बार आता है अपने शहर में। कहा गया था कि भाई 20 मई से हमारे घर पर 2-3 दिन में एक बार पानी आएगा, लेकिन बस कहा ही गया था ना। ऐसे झूठे आश्वासन तो प्रशासन ने बहुत बार किए हैं, लेकिन पूरे कभी करते हुए नजर नहीं आए। और दूसरी बात है, गर्मी का मौसम है भाई, और इस गर्मी के मौसम में अपने शहर के बहुत सारे एरियाज की लाइट बत्ती गुल हो रही है और प्रशासन कहता है कि नहीं नहीं बत्ती तो हम गुल नहीं करते। तो भाई ये अपने आप हो रहा है क्या, या इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है? तो आपके एरिया में लाइट आती है क्या भाई? किसी किसी एरिया में तो 2-4 घंटे बत्ती गुल हो रही है और लाइट बिल भरने के टाइम पर महावितरण वाले वक्त पर आते हैं और लाइट जाने के बाद लाइट ऑन करने के लिए हेलो हेलो फोन ही नहीं उठाते। हम बस हेलो करते रहते हैं, उधर से कोई आवाज नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेट्रोल और डीजल, उसकी क्या ही बात करें भाई। 30 से ज्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके अपने शहर के और प्रशासन कह रहा है कि पेट्रोल तो अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है, लेकिन कहाँ है? आम आदमी के गाड़ियों में तो पेट्रोल नहीं है, बस लाइन में खड़ा है आम आदमी। कुछ भी हो जाए आम आदमी को तो बस लाइन में खड़ा ही रहना पड़ता है। अब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई। खैर इतने सालों की आदत है, चलता है, चलने दो बोल के बस चल ही रहा है, आप क्या ही बोले। इसलिए तो कहा गर्मी का मौसम है, हम आम को चूस रहे और प्रशासन आम आदमी को चूस रहा है। स्टे ट्यून्ड।

अरे मोरी मैया, क्या गर्मी है इस साल। हर साल हमारा यही सवाल होता है। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो ऑन MGM 90.8 FM, और हर साल लगता है कि यार इस साल बहुत गर्मी है। एंड 2026 की गर्मी सच में यार बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है। और बात करें तो अपने शहर के टेम्परेचर की, तो दोपहर 12 से 3 और 4 बजे तक शहर का टेम्परेचर होता है 41 डिग्री सेल्सियस प्लस, कुछ दिन पहले 43 था, फिलहाल 41 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पहुंच रहा है। एंड महाराष्ट्र में ना तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर है पता है? वर्धा जिले में 47 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप 47 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सेकंड नंबर पर है नागपुर 46 डिग्री, तो ऐसी सिचुएशन है पूरे गर्मी की। एंड अपने शहर में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और बस अपने महाराष्ट्र की नहीं पूरे भारत में ना तो यही हाल है, 75% देश एकदम उबल रहा है इस साल गर्मी से। और आने वाले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दरमियान ना तो और भी गर्मी बढ़ सकती है ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि मई महीना है और उसके बाद गर्मी का मौसम खत्म होता है।

गर्मी से हम सभी लोग परेशान हो चुके हैं। 40-41 डिग्री सेल्सियस अपने शहर का टेम्परेचर होते हुए नजर आ रहा है, ये आप सभी को पता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। दोपहर के टाइम पर 12 से 3 या 4 बजे के वक्त सबसे ज्यादा धूप होती है, और इस वक्त अगर घर से बाहर हमें निकलना हो तो हम सोच समझ के निकलते हैं। आणि या दुष्काळात 13 महिना म्हणजे काय माहिती, दुपारच्या वेळेस आपण बाहेर निघालो आणि सिग्नल लागले तर आपल्याला 1.5 ते 2 मिनिटं सिग्नलवर थांबावं लागत होतं। 8 दिवसापासून मी एक नोटीस केलं, दुपारच्या वेळेस ना तर शहरात ट्रॅफिक खूप कमी आहे, क्योंकि दोपहर के टाइम पर लोक अक्सर बाहेर निघणं अवॉइड कर रहे हैं। एंड सिग्नल पर खड़े होने के बाद ऐसे 2 घंटे धूप में तो भाई जान जाने का चांस तो है ही। तो इसी वजह से शायद से मुझे ऐसा लगता है ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक डिसीजन लिया है कि दोपहर 12 से 3 या 4 बजे तक शहर के कुछ कुछ जगहों के सिग्नल्स बंद रहेंगे जहां पर ट्रैफिक थोड़ा मिनिमम कम होता है। अब आप सोचोगे ट्रैफिक जाम तो होगा, बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड कर रहे लोग दोपहर के वक्त बाहर निकलने का, तो शायद से इस वजह से इन्होंने ये सिग्नल दोपहर 3 घंटे बंद रखे। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दोपहर में अगर सिग्नल के ऊपर हम 2 घंटे भी खड़े रहे ना तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं एंड इससे लोग बीमार भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, इसका तो वेलकम है ही। तो अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारा इतना ख्याल रखती है तो अब हमारा भी फर्ज बनता है जब सिग्नल चालू होते हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हेल्प करने का। तो करोगे ना, वो हमारी हेल्प करते, तो उन्हें हमसे क्या चाहिए कि आम आदमी सारे रूल्स फॉलो करे और ट्रैफिक रूल्स ब्रेक ना करे। सो इतना आप कीजिएगा, इस तरीके से उनको थैंक यू हम कह सकते हैं। बाकी तो सुनते रहिएगा।

0: इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ देते हैं। You are listening MGM 90.8 FM. एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि 2026 और 27 में इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, तो उसके अंदर तकरीबन 5 से 10 या 20 प्रतिशत इंक्रीमेंट हो सकती है इस साल। अभी इंक्रीमेंट का सीजन है और ये होने भी वाली है, लेकिन ये होने के बावजूद भी बहुत सारी कंपनियों के एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ देते हैं अच्छी पगार होने के बावजूद भी। 55% लोकांचं असं म्हणणं आहे की त्यांना आता हे ऑफिस सोडायचं आहे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, एम्प्लॉय ना पगार बढ़कर भी मिलता है लेकिन जॉब छोड़ देते हैं? बिकॉज वहाँ का ऑफिस कल्चर और वहाँ का सो कॉल्ड बॉस गिरी वाली चमचागिरी, इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ना प्रेफर करते हैं कि भाई आप मुझे पगार कितनी भी दो लेकिन हम ऐसे कल्चर में काम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस में हमें देखने को मिलता है। हालांकि सो कॉल्ड बॉस लोग ऐसे होते कुछ कुछ जो खुद को ना राजा समझते, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि यार उन्हें लगता है कि वो उस कंपनी के राजा है और हम उनके पास एम्प्लॉय बोल के काम नहीं करते, एक नौकर बोलकर काम करते हैं और गदा मजदूरी जैसी मजदूरी वो करवाते हैं। इस वजह से एम्प्लॉयज को भी लगता है भाई 4 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। तो इसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज इंक्रीमेंट के बावजूद भी कंपनी छोड़ना प्रेफर करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा ना, क्योंकि कॉर्पोरेट में ये सब तो चलता है भाई और सभी का दर्द सेम होता है। क्या है ना, सीनियर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरा एम्प्लॉय ना बस काम करते रहना चाहिए, भले मैं उसको पगार दूं या ना दूं, और उसने बस चापलूसी करनी चाहिए या फिर मेरे पास आकर हाजी हाजी करना चाहिए। तो ये ईमानदार एम्प्लॉय को और मेहनत करने वाले एम्प्लॉय को ये नहीं जचता है। तो आपका क्या इरादा है, इस सीजन में इंक्रीमेंट के बाद आप जॉब छोड़ोगे या उसी कंपनी में जॉब करोगे? डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून्ड।
1: गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं मिलती। परेश पहुजा का यह गाना है जो कि अपने रिलीज के 3 से 4 साल के बाद हिट हो गया था। एक तरफा मोहब्बत क्या होती है और किस तरीके से होती है, यह गाना ये एक्सप्लेन करता है। और इस गाने में बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है।

अगर प्यार में भी लालच रखोगे तो क्या खाक प्यार करोगे। और वो सोचता है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे देखकर क्या सोचेगी, ये सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो तो मिट्टी में पला पड़ा है और वो परियों सी है। एक बेचैनी और एक घबराहट होती है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या बात करूंगा। वो थोड़ा डर लगा रहता है और अपनी पसंदीदा औरत वो कुछ भी बोल दे वो तो शायरी सी लगती है। कहना दूरी और इंतजार, इन दोनों की कहानी है ये गाना।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ

0: टाइम प्लीज।
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: Kajal.
1: Wait. I think we should go that way.
0: ये तो खराब है.
1: ये मेरा lucky charm है और ये मुझे हमेशा right direction देता है. Sometimes in life, you just have to let it go. और उसी flow में सही मंजिल मिलती है.
0: मतलब तुम एक compass से अपनी जिंदगी decide कर.

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शनिवार की ये प्यारी सी शाम थोड़ा आराम, थोड़ी मुस्कान और ढेर सारी अच्छी वाइब्स लेकर आई है। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आज का वक्त सिर्फ आपका है, तो चाहे आप घर पर चाय की चुस्कियां ले रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो या फिर अकेले में मन पसंदीदा गाने सुन रहे हो, हम हैं आपके साथ इस शाम को और भी खास बनाने के लिए। कहते हैं ना, शामें सिर्फ ढलती नहीं, कुछ खूबसूरत यादें भी बना जाती है। तो आज की इस शाम हैप्पी सैटरडे इवनिंग, थोड़ा सा संगीत सुन लेते हैं, थोड़ी बातें, ढेर सारी पॉजिटिविटी के नाम करते हैं। आने वाले अगले दो घंटे में होंगे आपके मन पसंदीदा गाने और कुछ दिल को छू लेने वाली बातें और ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आएगी। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रखिए और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत शाम को ओनली ऑन एमजी 94.8 FM। साथ है तो बात है
1: गुम

0: देखा क्या?
1: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, चॉकलेट का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर चॉकलेट सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी देता है। जी हाँ, आज हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट की। डार्क चॉकलेट सिर्फ टेस्टी नहीं होता बल्कि अगर सही मात्रा में खाया जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे दिल को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। कई लोग कहते हैं कि डार्क चॉकलेट मूड भी अच्छा करने में मदद करता है और शायद इसीलिए स्ट्रेस वाले दिन एक छोटा सा पीस भी दिल को थोड़ा हैप्पी बना देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी चॉकलेट बार खत्म कर दी जाए। हर अच्छी चीज की तरह इसमें भी बैलेंस बहुत जरूरी है। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, थोड़ा सा सेल्फ केयर, दोनों मिल जाए तो दिन और भी बेहतर बनने लगता है। वैसे सोचिए कितनी मजेदार बात है ना, जिस चीज को हम बचपन से सिर्फ स्वीट ट्रीट कहते हैं या समझते हैं, वही चीज अब हेल्दी टिप्स में भी शामिल हो गई है। तो अगली बार जब आपका मूड थोड़ा लो हो या काम के बीच थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो एक छोटी सी डार्क चॉकलेट के साथ खुद को थोड़ा ट्रीट जरूर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MJ Mirani Pondy FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी सक्सेस, लेकिन कभी कभी असली खुशी उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है जिन्हें हम रोज महसूस तो करते हैं पर ध्यान नहीं देते। सुबह की पहली चाय, किसी अपने का अचानक आया मैसेज, लंबे दिन के बाद थोड़ा आराम या फिर आपका पसंदीदा गाना, ये छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। कभी गौर किया है, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, रास्ते में किसी बच्चे की मुस्कान या बिना किसी वजह के दिल से निकली हुई हंसी, ये पल बहुत छोटे होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, लेकिन शायद खुश रहना ही चीज़ों को थोड़ा बेहतर बना देता है। तो आज इस शाम थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपनी ज़िंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए जो हर दिन आपके आसपास मौजूद है, क्योंकि खुशी हमेशा बड़ी वजहों से नहीं आती। कभी कभी एक प्यारा सा गाना, एक अच्छी याद या किसी अपनी की आवाज़ भी दिल को खुश कर देती है। आप सुन रहे हैं MG 90.8 FM और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। स्टे ट्यून्ड।

0: सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो एहसास होते हैं जो दिल को नई उम्मीद, नई ऊर्जा और जिंदगी फिर से खुलकर जीने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसा ही एक खूबसूरत गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने के बोल इतने आसान है और इतने सच्चे और इतने पॉजिटिव है कि हर बार सुनने पर लगता है जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही हो। आज फिर जीने की तमन्ना है यानी बीते बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का एहसास। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें आती है, कुछ बातें दिल को दुखा देती है, लेकिन फिर कोई गाना, कोई याद, कोई छोटी सी खुशी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अभी भी बहुत खूबसूरत है। इस गीत की सबसे खास बात यह है कि हमें आज में जीना सिखाता है, खुलकर हंसना, अपने सपनों को फिर से मौका देना और खुद से कहना हाँ जिंदगी अभी बाकी है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये गाना लोगों के दिल में उतना ही ताज़ा है। इसकी धुन हो, बोल हो या एहसास, सब कुछ दिल को हल्का और खुश कर देता है। तो अगर आपका दिन भी थोड़ा सा भारी लगे या मन को थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए हो तो ये गाना जरूर सुनिए, क्योंकि कुछ गाने सच में दिल को छू जाते हैं। सुनते रहिए एमजीएम नाड़ी पॉन्डेड फिल्म, साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस एन6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। वेल, जिंदगी हर दिन हमें छोटे बड़े फैसलों के सामने खड़ा कर देती है, कभी करियर का फैसला, कभी रिश्तों का, तो कभी बस खुद के लिए सही रास्ता चुनने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी के सबसे अहम फैसले आपको खुद लेने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद डिसीजन लेते हैं तब हमें अपनी ताकत और अपनी पहचान दोनों समझ में आती है। कई बार डर लगता है अगर गलती हो गई तो, लेकिन सच कहे तो गलत फैसले भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और यही सीख हमें आगे मजबूत बनाती है। दूसरों की सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन हर बार अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी सोच को नज़रअंदाज करना सही नहीं, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी आपकी है तो फैसले भी आपके होने चाहिए। एक अच्छा डिसीजन मेकर वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा रखे, जल्दबाजी से बचे और दिल के साथ दिमाग की भी सुने। कभी कभी सही फैसला तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन आगे चलकर वही फैसला ज़िंदगी को बेहतर बना देता है। तो आज अगर आप किसी मोड़ पर खड़े हैं और कोई फैसला लेने से डर रहे हैं, तो खुद पर थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM, साथ हैं तो बात है।

0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
1: हाँ चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना।
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा
1: बस चल

0: रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सिर्फ टैलेंट, सिर्फ लक? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले लोग वही नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, जो गिरने के डर से रुकते नहीं। कई बार हम कुछ नया करने से इसलिए डर जाते हैं कहीं फेल ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर सब गलत हो गया तो क्या। लेकिन सच तो ये है कि डर के पीछे अक्सर सबसे बड़ा मौका छुपा होता है। अगर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाता है तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। याद रखिए, डेयर टू डू नॉट टू फेयर द फॉल, यानी कोशिश करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में स्ट्रगल्स भी होते हैं और फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तो अगर आज आप कोई नया सपना शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, या बस जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि उड़ान वही भरते हैं जो गिरने से कभी डरते नहीं। स्टे ट्यून्ड, टाइम जिम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। तो दोस्तों, आखिरकार वीकेंड आ ही गया। पूरा हफ्ता काम, पढ़ाई, मीटिंग्स और जिम्मेदारियों में निकल जाता है, वही फिर आता है ये दो दिन जो सिर्फ आपके होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं वीकेंड में ये करेंगे वो करेंगे और देखते ही देखते संडे रात आ जाती है। इसलिए इस बार अपने वीकेंड को थोड़ा प्लान कीजिए, बहुत बड़ा प्लान नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स अपने लिए तय कीजिए। अगर लंबे समय से दोस्तों से बात नहीं हुई है तो एक कॉल कर लीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, किसी मन पसंदीदा कैफे में जाइए या फिर घर पर आराम से अपनी फेवरेट मूवी देख लीजिए। और हाँ, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी रखिए, क्योंकि वीकेंड सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं होता, खुद को रिचार्ज करने के लिए भी होता है। कभी देर तक सोना भी ज़रूरी है, कभी बिना वजह गाने सुनना भी ज़रूरी है, और कभी बस चुपचाप बैठ कर मन को आराम देना भी ज़रूरी है। याद रखिए, अच्छा वीकेंड वही होता है जिसके बाद मंडे थोड़ा सा आसान लगे। सो इस वीकेंड स्ट्रेस को थोड़ा ब्रेक दीजिए, मोबाइल नोटिफिकेशन से दूर रहिए और उन चीज़ों के लिए समय निकालिए जो आपको खुशी देती है। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजी मनाड़ी पॉइंट एफएम, साथ है तो बात है।

0: ऑफकोर्स आप सुन रहे थे आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। अब वक्त आ गया है जब आज की इस खूबसूरत मुलाकात को यही थोड़ा सा विराम देने का। उम्मीद है आज का ये सफर, ये बातें, ये गाने और छोटी छोटी मुस्कानें आपके दिन को थोड़ा और बेहतर बना पाई होगी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा आराम करने का, अपने मन को शांत करने का और उन खूबसूरत पलों को याद करने का जिन्होंने आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाई है। अगर आज का दिन अच्छा था तो उसके लिए शुक्रिया कहिए, और अगर थोड़ा मुश्किल रहा तो याद रखिए हर नया दिन नई शुरुआत लेकर आता है। जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया जरूर सिखा जाता है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। फिलहाल के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी शो में ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus in Sikshirko, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

कहते हैं ना कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ, और ये साबित हो चुका है। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ ऑल इज वेल, एंड ऑल इज वेल में बात कुछ ऐसी है कि भाई सोशल मीडिया पर आप एक चीज नोटिस की होगी इन दिनों के एक पॉलिटिकल पार्टी का बोलबाला नजर आ रहा है, ना वो रूलिंग पार्टी है ना अपोजिशन पार्टी है, वो पार्टी है कॉकरोच की। तकरीबन भाई 4 दिन के अंदर इसके 9 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। और यू नो व्हाट, इस पूरे कैंपेन की शुरुआत हुई थी 15 मई 2026 से। तो 15 मई के दिन कुछ ऐसा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था, वो केस के दरमियान उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था जो कि बहुत विवादित रहा था, और उसके ऊपर यूथ लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और उन्होंने जो इस देश के अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, तो उनको पैरासाइट और कॉकरोच से कंपेयर किया था। तो ये बात सारे यूथ को लग गई। जब बात यूथ के दिल पे लगती है तो एक्शन का रिएक्शन आना लाजमी है। तो कुछ एक्शन का रिएक्शन इस तरीके से आया कि पॉजिटिव तरीके से लेकर एक खुद की पार्टी शुरू की है कॉकरोच जनता पार्टी इस नाम से। और अगर आप इस पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे ना तो बहुत ही शानदार है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की है, ये आज के वक्त में बहुत जरूरी है। एमएलए हो, एमपी हो, नेता हो, इलेक्शन के बीच में कुछ गड़बड़ किया तो तकरीबन 20 साल के लिए उसे पॉलिटिकल बैन करवा देना चाहिए। तो इस तरीके से उनका एजेंडा है उस पार्टी का, जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी शुरू हुई है उसके अंदर ये कहा गया है। अब ये मोमेंट कहां तक जाएगा, किस रूप में ये सामने आएगा, और भी इसके कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब हम ये बात कर रहे हैं इस दरमियान भी अब तक उनको कुछ फॉलोअर्स तो बढ़ चुके ही होंगे, क्योंकि सोचिए 4 दिन में 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। देखते आगे कितने फॉलोअर्स इनके बढ़ेगी और ये कहां तक जाएगी यूथ पार्टी। सो कहते हैं ना कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। स्टे ट्यून्ड।

प्रशासन बात कर रहा है, अधिकारी लोग बोल रहे कि यार पेट्रोल तो बहुत है, आप फिक्र मत कीजिए। तो ये लंबी लंबी लाइनें किस चीज के लिए पंप के बाहर भाई, कोई बताएगा? आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमसीएम 90.8 एफएम। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे कि अपने शहर के बहुत सारे पेट्रोल पंप पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं और कुछ कुछ पेट्रोल पंप तो फिलहाल शट डाउन हो गए हैं क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है, उनके पास आ ही नहीं रहा। लेकिन प्रशासन तो कहता है कि भाई फिक्र मत कीजिए, पेट्रोल हमारे पास बहुत है, कोई भी पेट्रोल की दिक्कत नहीं आएगी। आप तो कहते हो जनाब, लेकिन असल मायने में पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ है पेट्रोल? आप तो कह रहे हो पेट्रोल है लेकिन रियलिटी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रशासन, सवाल तो आप ही से है। आप तो कह रहे हो कि पेट्रोल तो अवेलेबल है लेकिन असल मायने में पेट्रोल कहाँ है, कहाँ गायब हो रहा है? मुझे लगता है कि भाई गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है। ना प्रशासन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ना पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल आ रहा है, और बस अंधेरे में रह रहा है आम आदमी। उसे बस उम्मीद है कि पेट्रोल हमको मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कोई जवाब नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो रात रात भर लाइन में खड़े रहकर अपने गाड़ियों में पेट्रोल भर रहे। तो कुछ भी हो जाए भाई, दुनिया में कुछ भी हो जाए, झेलना और सहन करना तो आम आदमी को ही पड़ता है, है ना? वही तो एक मैंगो मैन है जिसको सब चूसते हैं और गुठली फेंक देते हैं काम होने के बाद, उस तरीके से भाई। खैर आप क्या ही बोले, बस प्रशासन से दरख्वास्त है कि पेट्रोल दीजिए हमको। स्टे ट्यून्ड।

मई महीने में आम आदमी आम चूस रहा है और आम आदमी को ये प्रशासन और ये दुनिया चूस रही है। भाई करे तो करे क्या। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM और बात कुछ ऐसी है कि ना पानी मिल रहा है, ना लाइट मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है और ना जिंदगी में सुकून मिल रहा है। बस सब तरह हाहाकार मचा हुआ है। पानी 8 दिन में एक बार या दो बार आता है अपने शहर में। कहा गया था कि भाई 20 में से हमारे घर पर 2-3 दिन में एक बार पानी आएगा, लेकिन बस कहा ही गया था ना। ऐसे झूठे आश्वासन तो प्रशासन ने बहुत बार किए हैं, लेकिन पूरे कभी करते हुए नजर नहीं आए। और दूसरी बात है, गर्मी का मौसम है भाई, और इस गर्मी के मौसम में अपने शहर के बहुत सारे एरियाज की लाइट बत्ती गुल हो रही है और प्रशासन कहता है कि नहीं नहीं बत्ती तो हम गुल नहीं करते। तो भाई ये अपने आप हो रहा है क्या, या इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है? तो आपके एरिया में लाइट आती है क्या भाई? किसी किसी एरिया में तो 2-4 घंटे बत्ती गुल हो रही है, और लाइट बिल भरने के टाइम पर महावितरण वाले वक्त पर आते हैं, और लाइट जाने के बाद लाइट ऑन करने के लिए हेलो हेलो फोन ही नहीं उठाते। हम बस हेलो करते रहते हैं, उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेट्रोल और डीजल, उसकी क्या ही बात करें भाई। 30 से ज्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं अपने शहर के, और प्रशासन कह रहा है कि पेट्रोल तो अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है, लेकिन कहाँ है? आम आदमी के गाड़ियों में तो पेट्रोल नहीं है, बस लाइन में खड़ा है आम आदमी। कुछ भी हो जाए, आम आदमी को तो बस लाइन में खड़ा ही रहना पड़ता है। अब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई। खैर, इतने सालों की आदत है, चलता है, चलने दो बोल के बस चल ही रहा है, आप क्या ही बोले। इसलिए तो कहा गर्मी का मौसम है, हम आम को चूस रहे प्रशासन आम आदमी को चूस रहा है। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे मोरी मैया, क्या गर्मी है इस साल। हर साल हमारा यही सवाल होता है। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और हर साल लगता है कि यार इस साल बहुत गर्मी है, एंड 2026 की गर्मी सच में यार बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है। और बात करें तो अपने शहर के टेम्परेचर की, तो दोपहर 12 से 3 और 4 बजे तक शहर का टेम्परेचर होता है 41 डिग्री सेल्सियस प्लस। कुछ दिन पहले 43 था, फिलहाल 41 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पहुंच रहा है। एंड महाराष्ट्र में ना तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर है पता है? वर्धा जिले में 47 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप, 47 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सेकंड नंबर पर है नागपुर, 46 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन है पूरे गर्मी की, एंड अपने शहर में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और बस अपने महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत में ना तो यही हाल है। 75% देश एकदम उबल रहा है इस साल गर्मी से। और आने वाले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दरमियान ना तो और भी गर्मी बढ़ सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि मई महीना है और उसके बाद गर्मी का मौसम खत्म होता है, तो टाटा बाय बाय करने वाली ये गर्मी है जिसमें टेम्परेचर अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। और इंडिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आज के वक्त में कहां पर है, तो यूपी के बांदा इस शहर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र में वर्धा, यहाँ पर है 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस गर्मी में अपना ख्याल रखिएगा, एंड दोपहर के वक्त बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड सुनते रहिए।
1: MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

कहते हैं कि जो सच्ची मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं मिलती। परेश पहुजा का ये गाना है जो कि अपने रिलीज के 3 से 4 साल के बाद हिट हो गया था। एक तरफा मोहब्बत क्या होती है और किस तरीके से होती है, यही गाना ये एक्सप्लेन करता है। और इस गाने में बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है।

0: लालच नाल कीता
1: अगर प्यार में भी लालच रखोगे तो क्या खाक प्यार करोगे। और वो सोचता है कि जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे देखकर क्या सोचेगी, ये सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो तो मिट्टी में पला पड़ा है और वो परियों सी है। एक बेचैनी और एक घबराहट होती है कि जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या बात करूंगा। वो थोड़ा डर लगा रहता है और अपनी पसंदीदा औरत वो कुछ भी बोल दे वो तो शायरी सी लगती है। कहना दूरी और इंतजार, इन दोनों की कहानी है ये गाना।

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 90.8 FM. Saath hai to baat hai.
1: एक मुस्कान की कीमत तुम क्या जान रमेश बाबू, एक मुस्कान से तस्वीर बड़ी आ जाती है। MGM 90.8 FM पर आरजे अदनान आपके साथ है। एक मुस्कान को जैसे आपकी तस्वीर में ना चार चांद लग जाते हैं, ये आपने भी नोटिस किया होगा। नॉर्मल सा ना तो कैमरे के सामने बस खड़े रहिए चेहरे पर बिना मुस्कान के साथ, और फोटो क्लिक कीजिए और देखिएगा कैसी लगेगी फोटो। एक और फोटो लीजिए जिसके अंदर आपकी मुस्कान की चमकान दिखाई देगी, और फिर उसके बाद वो फोटो देखिएगा क्लिक करने के बाद कितना फर्क है। पहली फोटो लगती है कि यार ये क्यों ही निकाली फोटो, इतनी गंदी। उसके बाद जिस फोटो में मुस्कान आएगी ना, मतलब चेहरे पर स्माइल रहेगी ना, वो फोटो देखिएगा खूबसूरत लगेगी, माशाल्लाह लगेगी। तो इतनी ताकत होती है एक मुस्कान में, मतलब मैं स्माइल की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहोगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये बार बार क्यों ले रहा है, मुस्कान मुस्कान मुस्कान। खैर वो तेरी वाली गर्लफ्रेंड है, मैं अपनी मुस्कान मतलब मैं हैप्पीनेस की और स्माइल की बात कर रहा हूँ। तो इतनी ताकत होती है एक स्माइल में। वैसे मेरे जैसे लोग बहुत है जिनको ना तो स्माइल करना ही नहीं आता। हालांकि जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब फोटो की बात आती है ना तो उन्हें सबसे मुश्किल काम लगता है स्माइल करना। जी हाँ, मेरा भी वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ कुछ लोग ना तो इतने बेहतरीन स्माइल करते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि शाहरुख खान की स्माइल आया है, तौबा तौबा क्या बढ़िया स्माइल है ना, मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो ऐसी स्माइल जरा आपके चेहरे पर भी बरकरार रखिएगा, और ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, स्माइल के साथ फोटो और विदाउट स्माइल के साथ फोटो, तब आपको समझेगा कि खुश रहने की कीमत कितनी कम है भाई, बहुत छोटी है, और फ्री में खुशियां मिलती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
2: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
3: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
2: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
3: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299।
2: आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जॅपनीज शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
4: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
2: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जॅपनीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन। यासोबतच

0: क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे, और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की। तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।
1: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 937171423 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस, N6 सिडको, छत्रपति।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

या आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: रेडियो MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।